लगी लाउट वो टाउट सख्स हो गया ना अपनी लाउट चाव करने उन्होंने भूमि पे वाले तैनिक पता सिला लग गया ना आप लोगों ने टमाने के वाले में अम्मा के चंग में उन्हें संग ना टमालू तलो तुम ना सुलाओ मिगिची तो साइक्समिन